गुड इवनिंग फ्रेंड्स, 103.1 एफएम फ्राइडे विद रिचा में आप सभी लिसनर्स का स्वागत है। मैं रिचा आज एक ऐसे टैलेंटेड, क्रिएटिव और ग्रेट पर्सनालिटी पे बात करने वाली हूँ जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग पहचान दी। उन्होंने देश प्रेम की भावना और भ्रष्टाचार पर कटाक्ष वाली बेहतरीन फिल्में बनाई। वो एक इकलौते ऐसे एक्टर डायरेक्टर थे जिन्होंने भारतीय सभ्यता को दिखाने वाली फिल्मों का दौर शुरू किया। उनकी गहरी और गूढ़ दार्शनिक सोच कमाल की रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महान एक्टर डायरेक्टर और राइटर मनोज कुमार की।

मनोज कुमार बहुमुखी प्रतिभा के धनी, इनका असली नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। पाकिस्तान के अबीटाबाद में इनका जन्म हुआ और इन्होंने बहुत करीब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे का दर्द महसूस किया। बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए मनोज कुमार का बचपन दिल्ली के एक रेफ्यूजी कैंप में बीता और यहीं से फिल्म जुगनू देखने के बाद उनके अंदर अभिनय की वो चिंगारी जली जो कभी बुझी ही नहीं। माता पिता की परमिशन और आशीर्वाद से मनोज कुमार दिल्ली से मुंबई आ गए। शुरुआती दिनों में कभी प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ा तो कभी पुलिस के डंडों को सहना पड़ा, लेकिन ये सब उनके सपनों के आगे बहुत ही छोटी परेशानियां थी। फाइनली 1957 में फैशन फिल्म में एक छोटे से रोल में उन्हें काम मिला। 1960 में फिल्म कांच की गुड़िया में बतौर हीरो उन्हें पहचान मिली और उसके बाद तो उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी।

तूफान को आना है आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का छाकर ढल जाना है, पर छाइयां रह जाती निशानी है। जी हाँ, मनोज कुमार अपनी पहचान अपनी परछाई छोड़ गए हम सब के दिलों पर, और उनका निधन अभी हाल ही में हुआ तो हम सब की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों, कभी आपने क्या सोचा है कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? ये इस बात से पता चलता है अगर आप उस कंट्रीब्यूशन को हटा दें और उस फील्ड को क्या नुकसान पहुंचा। जैसे पाइथागोरस का जो मैथ्स में कंट्रीब्यूशन रहा है, अगर उन्हें वो थ्योरम ना खोजे होते तो सैकड़ों साल से ना तो ब्रिज बन रहे होते और ना छतों और दीवारों के बीच एकदम सही जो कोण बनते हैं ना वो बन रहे होते। ऐसे ही इस देश की फिल्मों में इतिहास में अगर हम देखें कि मनोज कुमार अगर ना होते तो हमारे देश में हम देशवासी देशभक्त तो शायद ज़रूर होते, लेकिन देशभक्ति वैसे प्रकट ना कर पाते, ना तो 26 जनवरी वैसी होती और ना ही 15 अगस्त वैसा होता। क्योंकि मनोज कुमार ना होते तो देश का बच्चा बच्चा कैसे जान पाता कि जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। और मनोज कुमार ना होते तो हम इन पर्वों को, जी हाँ, ये कैसे गाते हैं, प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अलविदा भारत कुमार, भारत को आप पर हमेशा गर्व रहेगा और भारतवासियों पर आपका कर्ज रहेगा।

क्रांति पूरब और पश्चिम, गुमनाम, हरियाली और रास्ता, वो कौन थी? उपकार, रोटी, कपड़ा और मकान, संतोष, हिमालय की गोद में पत्थर के जन्म, शोर, साजन और शहीद जैसी बेहतरीन फिल्म्स आज भी हम सबको उनकी बेजोड़ एक्टिंग और देशभक्ति की याद दिलाती है।

0: You are listening to Friday with Richa only at 5VBI 103.1 FM.
1: For live streaming at www.5vbi.com.au. Also on demand at
0: www.5vbi.com.au under Indian Hindi.
1: Join us on Friday with Richa. You are tuned into Friday with Richa at 5EBI 103.1 FM. If you miss a live program, don't worry. Go to www.5ebi.com.au and click Radio on Demand. To listen to previous programs, click Indian Hindi under Friday and tune into the amazing world of Bollywood music. Listen and learn about Bollywood history, updates, information, and of course, enjoy. Join Richa every Friday at 5 p.m. You are listening to Friday with Richa.
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपने ट्यून किया है 5VBI 103.1 FM, साथ में मैं हूँ रिचा। और दोस्तों, आज मैं आपको सुनवा रही हूँ बॉलीवुड में भारत कुमार नाम से जाने जाने वाले महान एक्टर, डायरेक्टर और राइटर मनोज कुमार की लाइफ के कुछ सुने अनसुने किस्से, और साथ में उनकी फिल्मों के कुछ फेमस सॉन्ग्स भी हम सुन रहे हैं। तो दोस्तों, मनोज कुमार ने हाल ही में यानी कि 4 अप्रैल को इस दुनिया से अलविदा कहा। वो 87 वर्ष के थे और उनका नाम फिल्मों के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उनका डेडिकेशन, उनकी सोच और काम करने का तरीका बेहद नायाब था।

0: चाल।
1: मनोज कुमार की फैमिली लाइफ की तरफ अगर रुख करें दोस्तों, तो उनकी पत्नी का नाम है शशि गोस्वामी, बड़े बेटे विशाल और छोटे बेटे का नाम है कुणाल गोस्वामी। शशि और मनोज कुमार की लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी दोस्तों। साल 2013 में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब मनोज ग्रेजुएशन कर रहे थे तो एक फ्रेंड के घर गए, वहाँ पहली बार शशि को देखा और अपना दिल दे बैठे। करीब 1-1.5 साल तक दोनों एक दूसरे को देखते ही थे बस। फिर वो दिन भी आया जब दोनों की कहानी मुलाकात से कुछ आगे बढ़ी और धीरे धीरे प्यार हो गया। उस प्यार के बाद शादी में भी थोड़ी रुकावटें आईं। हालांकि मनोज के घर वाले तैयार थे, लेकिन शशि के घर वालों को काफ़ी मनाना पड़ा और फिर दो प्यार करने वाले आखिर मिल ही गए। दोनों ने जल्द ही शादी कर ली।

दोस्तों, मनोज कुमार और शशि जी के दो बेटे हैं, कुणाल और विशाल। दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड हैं और दोनों ने फिल्मों में कदम रखा अपने समय पे, लेकिन सक्सेसफुल वो नहीं हो सके। काफ़ी अप एंड डाउन्स रहे दोनों के बॉलीवुड करियर में। फिर फाइनली कुणाल ने केटरिंग बिजनेस संभाला और विशाल बॉलीवुड में म्यूजिक, विजुअल और प्रोडक्शन के तौर पर काम करने लगे। मनोज कुमार का जीवन संघर्ष में रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और ना ही जीवन में कभी अच्छे कामों और अच्छी फिल्मों से समझौता किया। दोस्तों,

0: आप सुन रहे हैं हिंदी प्रसारण फ्राइडे विद रिचा 103.1 एफएम पर।
1: और मैं रिचा आज आपको सुनवा रही हूँ फ्राइडे विद रिचा में मनोज कुमार स्पेशल प्रोग्राम।

दोस्तों, मनोज कुमार का 40 साल का लंबा फिल्मी करियर रहा है, जिसमें उन्होंने फिल्मों में भी काम किया और खुद फिल्में भी बनाई। और क्या आप जानते हैं कि 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला। भारतीय राजस्व सेना अधिकारी निरुपमा कोटरू ने द स्विंगिंग 70s नाम की किताब लिखी, जिसमें मनोज कुमार पर एक आर्टिकल भी लिखा गया।

था तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। इस गीत को सुनते सुनते दोस्तों इफ्तिखार नसीम साहब का एक शेर याद आता है मुझे। उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। तो आप सुन रहे हैं फ्राइडे विद रिचा रिचा के साथ, और आज मैं आपको सुनवा रही हूँ मनोज कुमार स्पेशल प्रोग्राम। तो आइए ये अगला गीत सुनते हैं जिसे सुनकर आपका दिल भी गुनगुना उठेगा, दुल्हन चली।

दोस्तों, मनोज कुमार जी के लिए एक और किस्सा बहुत ही फेमस है कि उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, यानी कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जी हाँ, उन्होंने फिल्म शहीद जो कि 1965 में आई थी, उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने मनोज कुमार को दिल्ली बुलाया। जब वो दिल्ली पहुंचे तो उनकी शास्त्री जी से मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने फिल्म शहीद पर ये कहा कि उन्हें वो बहुत ही अच्छी लगी है और क्यों ना मनोज जी कुछ और देशभक्ति की फिल्में बनाएं, किसानों पर फिल्में बनाएं। और शास्त्री जी की प्रेरणा से मनोज कुमार ने फिल्म 1967 में उपकार बनाई और 1970 में पूरब और पश्चिम फिल्म बनाई और इन्हीं फिल्मों ने उन्हें मनोज कुमार से भारत कुमार बना दिया। ऐसी महान देश प्रेमी आत्मा को शत शत नमन।

दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि उपकार फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ कहानी और सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का अवार्ड मिला और साथ ही राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें मिला। मनोज कुमार अच्छी तरह से जानते थे कि भारतवासी दिल से सोचते हैं। उस वक्त वो जानते थे कि संवेदनशील और देश प्रेम को उजागर करती स्क्रिप्ट जरूरी है। वो एक मंझे हुए राइटर होने के साथ साथ बेहतरीन एक्टर और डायरेक्टर भी थे, जिन्होंने जब भी देश प्रेम की बात करी तो घर घर में वो गूंज सुनाई देने लगी। मीडिया इज अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस बात को वो अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए उन्होंने गंदी और फूहड़ फिल्मों के बोलबाले को कम कर बेहतरीन शिक्षाप्रद फिल्में बनाई। मनोज कुमार अपने कामों से सदा जाने जाएंगे, उनके लिए ये लाइन्स बिल्कुल सटीक बैठती है। दोस्तों, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। मनोज कुमार जी अमर हो गए, उन्हें पूरे शाही सम्मान के साथ तिरंगे में लपेट कर गमगीन आंखों से इस दुनिया ने विदा किया। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।

दोस्तों इसी के साथ दीजिए आज के प्रोग्राम से ऋचा को इजाजत। अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल पर फिर मिलने के वादे के साथ बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।